0: सुन्न काली, आज राति हामी भाग्न पर्छ है।
1: आमाले चाहिँ मारिहाल्छिन् नि फेरि।
0: रातिको 2 बजी तिम्रो आमाले कहाँ देख्छिन् त भने।

0: के तपाईँ सम्पूर्ण घरयासी सामानहरू एउटै छानामुनि किनमेल गर्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, मीन भवन नयाँ बानेश्वरमा खुलेको छ अल इन वान मार्ट सुपर मार्केट। हामी कहाँ लत्ता कपडा, खाद्य सामग्री, खाना नास्ताका पसलहरू, बैंकिङ संस्थाहरू लगायत नुनदेखि सुनसम्मका सामानहरू एउटै छानामुनि उपलब्ध छ। अब घरयासी सामानहरू किनमेल गर्न धेरै पसलहरू चार्नु पर्दैन। सम्पूर्ण सामग्रीका लागि अल इन वान मार्ट सुपर मार्केट, मीन भवन नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ।
1: गंदकी कॉलेज अनाउंस रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर प्लस टू कंप्यूटर साइंस अलोंग विथ होटल मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट ह्यूमैनिटीज एजुकेशन एंड लॉ आवर फीचर आउटस्टैंडिंग बोथ रिजल्ट साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल सोशल एंड एकेडमिक एनवायरनमेंट फॉर मोर डिटेल गंदकी कॉलेज मैथी 16 काठमांडू फोन 0149662359851018373